अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उसे मिटाने के लिए काफी होती है। जीवन हमें यही सिखाता है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।

जिंदगी एक बेहद खूबसूरत सफर है जहां हर मोड़ एक नया अनुभव है और एक नई सीख लेकर आता है। इसीलिए मुस्कुराते हुए हर पल को जीना और हर मंजिल का आनंद लेना ही जीवन की असली कला है।

और भोर सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते अब आपको छोड़े जा रहे हैं अभिलाषा फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है रफी साहब और मन्ना डे साहब ने। और इसी के साथ सुरभि आपसे चाहती है इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।

0: संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण

Very good morning, my dear listeners. You are listening to 101.9 FM Rainbow, Rainbow के साथ लाइफ है रंगीन। तो आज का दिन बहुत ही ड्रीमी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम उसकी बात करने वाले हैं जो हर रोज विदाउट फेल हमसे मिलने आ जाता है। जी हाँ, वो है चांद, क्योंकि आज के दिन इंटरनेशनल मून डे मनाया जा रहा है। वैसे एक बात बताएं, जब भी रात को चांद दिखता है आप सबसे पहले क्या करते हैं? बस देखते हैं या फोटो लेते हैं या फिर किसी की याद आ जाती है? सच बताओ, चांद से हर किसी को कोई ना कोई मेमोरी तो जुड़ी होती है। जब हम टेरेस पे खड़े होकर चांद को देखते हैं और नीचे से मम्मी आवाज़ दे, बेटा मच्छर काट लेगा, तो ऐसी छोटी छोटी यादें दिल के काफी करीब होती है। सुनते रहिए FM रेनबो 101.9।

कहा जाए तो एक छोटा सा कदम एक इंसान के लिए नहीं पर कि बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भी एक बहुत बड़ी चलांग है। दोस्तों, बचपन से हम सब ने चांद को देखा है। कभी चांद कहानियों का हीरो बना, तो कभी शायरी का हिस्सा, और कभी प्यार की मिसाल, और आज साइंस का सबसे बड़ा रिसर्च डेस्टिनेशन है। आज हम बात करेंगे चांद की कहानियों की, साइंस की, और उन सपनों की जो हमें आसमान से भी आगे ले जाएगा। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM विद मी आज्ञा अभिज्ञा।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. तो हाँ, हम बात कर रहे थे मून की. दोस्तों, क्या आप जानते हैं मून अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. अर्थ से मून की एवरेज डिस्टेंस लगभग 384,000 किलोमीटर है. मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 1/6 है, और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स वहाँ हल्की हल्की जंप्स लगाते हुए नजर आते थे. मून पर हवा नहीं है, इसलिए वहाँ कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई देती. अगर दो लोग मून पर खड़े होकर बात करें तो बिना रेडियो के एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मून हमेशा अपना एक ही साइड अर्थ को दिखाता है. दूसरी साइड को हम फार साइड ऑफ द मून भी कहते हैं. तो चलिए इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एक अगले गाने के बाद.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक लिसनर्स। तो हाँ, जब भी मून मिशंस की बात होती है, इंडिया का नाम गर्व से लिया जाता है। इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया और उसी मिशन ने मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स होने का सबूत दिया है। फिर आया चंद्रयान 2, लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन मिशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इंडिया दुनिया का पहला देश बना जिसने मून के साउथ पोल का सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की। और ये सिर्फ इसरो की ही नहीं, हर इंडियन की जीत थी। उस दिन पूरा देश गर्व से भर गया था। सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9. जी हाँ, मून सिर्फ एक प्लैनेट का सैटेलाइट ही नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। हर रात अंधेरे में भी चमकता है, ये हमें सिखाता है हर अंधेरा परमानेंट नहीं होता, कभी कभी अपनी रोशनी किसी और से मिलती है, जैसे मून को सन से, और फिर भी वो पूरी दुनिया को रोशन करता है। इसी तरह हम भी दूसरों से सीखकर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। इंटरनेशनल मून डे सिर्फ मून सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, ये ह्यूमन करेज, साइंस, टेक्नोलॉजी और क्यूरियोसिटी को सेलिब्रेट करने का दिन है। इंसान ने सपना देखा और चांद तक पहुंच गया, इसलिए सपने कभी छोटे मत रखिएगा। हो सकता है आज का सपना कल की रियलिटी बन जाए। मैं हूँ आपकी अजय विज्ञान संतरे, ये आकाशवाणी 101.9।

0: FM Rainbow 101.9
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो। जी हाँ, चांद और बॉलीवुड का कनेक्शन दिलों को जोड़ता है। कभी किसी के चेहरे को चांद से कंपेयर किया गया तो कभी चांद को प्यार का मैसेंजर बनाया गया और कभी दूर बैठे अपने की याद का सिंबल। इसलिए बॉलीवुड में चांद सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, एक इमोशन है। डिकेड से हिंदी सिनेमा ने मून को रोमांस, ब्यूटी और लॉन्गिंग का हिस्सा बनाया है। और शुरुआत करते हैं उस एवरग्रीन गाने से जिसे सुनते ही दिल कहता है वाह। तो चलिए सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक लिसनर्स। तो दोस्तों, बॉलीवुड में अगर किसी की खूबसूरती डिस्क्राइब करनी हो तो सबसे पहले कंपैरिजन होता है चांद से। चांद सा चेहरा, चांद सी महबूबा, ये सब लिरिक्स ही नहीं, हमारी कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। और जब बात हो रोमांस की तो कैसे भूल सकते हैं, इस गाने में चांद शर्मा ही जाता है, क्योंकि हीरोइन की खूबसूरती उससे भी ज़्यादा है। इस तरह के मून इमेजिनरी वाले गाने बॉलीवुड में बहुत पॉपुलर है। दोस्तों, 1950s हो, 1970s हो या 2020 भी हो, हर जनरेशन का अपना एक मून सॉन्ग तो ज़रूर रहा है। पुराने ज़माने में ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, फिर आया खोया खोया चांद, और नए ज़माने में चांद सिफारिश, मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई, फैशन भी बदल गया, लेकिन बॉलीवुड का चांद कभी पुराना नहीं हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हिंदी फिल्म म्यूजिक में चांद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रोमांटिक सिंबल्स में से एक माना भी जाता है। तो चलिए सुनते हैं एक मज़ेदार गाना।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back listeners. तो हाँ, कभी आपने सोचा है कि हम जब भी खुश होते हैं तब भी चांद को देखते हैं, और जब उदास होते हैं तब भी चांद को ही देखते हैं। शायद इसीलिए पोएट्स और लिरिसिस्ट को चांद इतना पसंद है। एक वक्त था जब लोग बालकनी या टेरेस पर बैठकर चांद देखते हुए गाने सुनते थे। आज भी फुल मून हो और बैकग्राउंड में कोई सॉफ्ट बॉलीवुड मेलोडी, बस दिल खुश हो जाता है। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, और जब भी रात को चांद दिखे एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है किसी की याद भी साथ ले आए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, नमस्कार, हेलो, आदाब दोस्तों. तो हाँ, आज आपके लिए एक छोटा सा सवाल है. कभी किसी ने आपसे कहा है कि यार थोड़ा दिमाग लगा लूं? अगर हाँ तो आज का दिन बिल्कुल आपके लिए है. जी जी जस्ट फॉर फन, क्योंकि आज है इंटरनेशनल चेस डे. वैसे सच बताएं, स्कूल में कितने लोग सिर्फ इसलिए चेस खेलते थे क्योंकि पीटी पीरियड में धूप बहुत होती थी और कुछ लोग तो सिर्फ नाइट की एल शेप वाली मूव देखकर ही कंफ्यूज हो जाते थे. लेकिन दोस्तों, चेस सिर्फ एक बोर्ड गेम नहीं, ये है पेशेंस का गेम और प्लानिंग का गेम भी, और कभी कभी तो ईगो का गेम भी बन जाता है. आज के इस शो में हम करेंगे चेस की बातें, अमेजिंग फैक्ट्स, इंडिया के चैंपियंस और सबसे ज़रूरी लाइफ और चेस का कनेक्शन. तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. In the studio clock, time is passing by 11:41. तो हाँ, दोस्तों, कभी नोटिस किया है? लाइफ भी बिल्कुल चेस की तरह है. कभी हम किंग बनने की कोशिश करते हैं, तो कभी क्वीन जैसे मल्टीटास्किंग मोड ऑन हो जाता है, और कभी पाउन की तरह धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है? चेस में सबसे वीक पीस मानने जाना वाला पॉन अगर बोर्ड के लास्ट तक पहुंच गया तो क्वीन बन सकता है. मतलब चाहे आज आप बिगिनर हो, कल आप चैंपियन बन सकते हो. इसलिए कभी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा. और एक बात, चेस में सबसे पहले कौन सी चीज हार जाती है? क्वीन, किंग? नहीं नहीं, पेशेंस. जल्दी करोगी तो गलत मूव हो जाएगा. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो. मैं हूँ आपकी अभिज्ञा.

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेल दोस्तों, अब एक बात सुन के प्राउड फील होगा। जो गेम आज पूरी दुनिया खेल रही है, उसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई थी। पुराने टाइम में इसे चतुरंग कहा जाता था, बाद में पोषा गया और नाम बना शतरंज, और फिर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। मतलब आज के ज़माने में इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं करता, हम तो सेंचुरीज पहले इंटेलिजेंस भी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और दोस्तों, इंटरनेशनल चेस डे हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड चेस फेडरेशन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: से डरता हूँ। समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. You are listening to 101.9 FM Rainbow. रेनबो के साथ है, लाइफ है रंगीन। तो हाँ, वैसे बिगिनर्स की कुछ क्लासिक मिस्टेक्स हैं। पहली, गेम स्टार्ट होते ही क्वीन को बाहर निकाल देना, जैसे क्वीन नहीं सुपर हीरो हो। दूसरी, नाइट की मूव भूल जाना और हर बार अरे ये सीधा क्यों नहीं जा रहा है। और तीसरी, किंग को बचाते बचाते पूरी आर्मी को खत्म कर देना। लाइफ में भी हम कभी कभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। चेस सिखाता है कि हर मूव का फ्यूचर होता है, सोच के चलिए। ऑफिस जाना, बजट बनाना, ट्रैफिक अवॉइड करना, एग्जाम की प्रिपरेशन, ये सब भी एक तरह का चेस ही होता है। हर दिन हम मूव्स डिसाइड करते हैं, कब रुकना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रिस्क लेना है और कब वेट करना है। एक और बात, चेस में चेक मिलने का मतलब गेम खत्म नहीं होता, बस अलर्ट हो जा। लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो समझ लेना ये एंड नहीं है, नेक्स्ट मूव सोचने का वक्त है। तो

0: FM Rainbow 101.9।
1: दोस्तों, इंटरनेशनल चेस डे पर बस एक बात याद रखिएगा, लाइफ में हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर गेम से कुछ सीखना जरूरी होता है। और हाँ, आज घर जाकर मोबाइल साइड में रखिए और चेस बोर्ड निकालिए और अपने फैमिली के साथ एक गेम जरूर खेलिएगा। हो सकता है पापा जीत जाए या मम्मी चेकमेट कर दे या घर का छोटा बच्चा सबको हरा दे। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM, मैं हूँ आपकी आरजे अभिज्ञा।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, dosto. You are listening to Akashwani 101.9 FM Rainbow. In the studio clock, time is passing by 12:46. जी हाँ, आज है मंडे. मंडे का सुबह होते अरे यार वीकेंड खत्म हो गया. लेकिन क्या मंडे को हम एक फ्रेश बिगनिंग के रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल. हर मंडे एक ब्लैंक पेज की तरह होता है. पिछले हफ्ते जो नहीं कर पाए उसका गिल्ट लेकर चलने की जरूरत नहीं है. आज की एक नई चांस है. द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स. यानी दोस्तों, हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि बड़े सपने छोटी छोटी आदतों से पूरी होती हैं. अगर रोज सिर्फ 15 मिनट किसी स्किल को दे, एक साल बाद कितना डिफरेंस होगा सोचिए. एक स्टूडेंट रोज सिर्फ 10 नए इंग्लिश वर्ड्स याद करता था, एक साल बाद उसकी वोकैबुलरी 3500 वर्ड्स से ज्यादा हो गई. मतलब छोटी हैबिट और बड़ा रिजल्ट. तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9.

वाह, वो था ब्यूटीफुल सॉन्ग। वेलकम बैक लिजनर्स, यू आर लिजनिंग टू 101.9 एफएम रेनबो। कभी कभी हम फेल होते हैं और लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि फेल्योर सिर्फ एक फीडबैक है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों अटेम्प्ट्स किए। जब उनसे पूछा गया था कितनी बार फेल कैसे हुए, उन्होंने कहा, आई डिड नॉट फेल, आई फाउंड मेनी वेज दैट डिड नॉट वर्क। गिरना गलत नहीं है, गिर कर वही रुक जाना गलत है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और हर किसी की लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन याद रखिए, लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं पर पूरी स्टोरी नहीं। अपनी रेस खुद दौड़िए। कल के आप और आज के आप, बस इतना कंपैरिजन काफी है। ग्रैटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। सुबह उठते ही अगर हम सिर्फ तीन चीजें याद करें जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, तो पूरा दिन पॉजिटिव फील होता है। एक कप चाय, एक हेल्थी फैमिली, एक अच्छा दोस्त, कभी कभी हैप्पीनेस इन्हीं छोटी बातों में होती है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी मंडे परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपका एटीट्यूड उसे परफेक्ट बना सकता है। अगर आज सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेप भी ले लिया तो आप कल से बेहतर हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए रोज मेहनत की जाती है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर मंडे एक नई शुरुआत लेकर आती है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं हूँ आपकी आजे अभिज्ञा। आपसे लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. Hello, Rainbow का वक्त हो चुका है. तो हाँ, बचपन में हम सभी ने गेम्स तो बहुत सारी खेले ही होंगे. आउटडोर गेम्स जैसे कि क्रिकेट, खो खो और कबड्डी. जैसे इनमें से आप तो आज का टॉपिक ये है कि आपका बचपन का फेवरेट आउटडोर गेम क्या है और उससे जुड़ी हुई याद आप हमसे शेयर कर सकते हैं. तो आप हमसे जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं 0402323004821 0402970471 पर. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9.

0: वेल वेलकम बैक. हेलो रेनबो मी. हमारा अगला कॉलर से हम बात करेंगी. हेलो
1: जी हेलो,
0: जी नमस्कार. आपका नाम?
1: नमस्कार. मैं शिवा बोल रहा हूँ, गटके से हैदराबाद से.
0: जी शिवा जी. जी आज का टॉपिक आपने सुना है?
1: हाँ, फेवरेट खेल के बारे में ना.
0: जी हाँ, आप बता सकते हैं.
1: हाँ.

0: वेल वेलकम बैक लिसनर्स. हेलो रेनबो में हमारी अगली कॉलर से हम बात करेंगे. हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
1: ये रमेश बात कर रहा हूँ मैडम। तेलुगु में बात कर सकते हैं ना? तेलुगु माटाड़ो चो।
0: मार्टर रेंडी पर दे दो ये वाला टॉपिक
1: नमस्ते
0: बिना रहा.
1: रमेश अम्मा। इधर 1968 लो ना रनिंग लो

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेल दोस्तों, आज हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, इंटरनेशनल मून डे के बारे में, चेस डे के बारे में और मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ, पर आप लोग कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो, क्योंकि आपके साथ जुड़ने वाले हैं आरजे राजेश जी जश्नी हैदराबाद के साथ और ढेर सारी मस्ती के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30:15 हो रहे हैं। लीजिए पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: गीत सुरेले गाता जा। इस प्रोग्राम में दोस्तों पुराने फिल्मी गीत आपको सुनवाए जाएंगे। नैरंग प्रोग्राम के आखिर में आप सुनेंगे पयाम शब। आज की शब का पयाम जैदी की जबानी आप सुनेंगे। तो आइए दोस्तों आगाज पर सुनते हैं हरफे ताबिंदा। तहरीर जनाब मोहम्मद अब्दुल हई की है, आइए सुने।
1: तालीमी निज़ाम में अखलाकियात, तरबियत और सालह माशरे के तस्वुर का फुकदान, बच्चों की तरबियत और ज़हनी नशोनुमा का बेहतरीन ज़रिया वालदेन थे और आज भी वालदेन ही हैं। ख़ानदान, कौम व मुल्क के लिए जो नई इकदार मुज़िर हैं, इनसे बच्चों को दूर रखने की कोशिश वालदेन ही कर सकते हैं। बच्चों को महंगी महंगी फ़ीस के कॉन्वेंट स्कूलों में भेजकर अपनी ज़िम्मेदारी से वालदेन अगर बचेंगे तो लाजमी है बच्चे बेमहार होने से नहीं बच सकेंगे। उस्ताद या उस्तानी तरबियत का शरबत भरा गिलास किसी दर्जे के बच्चे को नहीं पिला सकते। वालदेन ही अपने हुस्न सलूक से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रफ्ता रफ्ता हर दिन पिला सकते हैं। इसीलिए बच्चों की सोहबत व दोस्ती यारी और गैर अखलाकी व गैर समाजी हरकत पर भी निगाह रखने की वालदेन की जिम्मेदारी बनती है। जो वालदेन ऐसा नहीं करते या नहीं करेंगे वो कल बच्चों को दोष देने से भी बाज रहने के लिए तैयार रहें। देखा जाता है बच्चे क्लासेस में एक दूसरे के साथ मजहब और ज़ात बरादरी की नस्बत से यारी दोस्ती बनाते और निभाते हैं। हमदर्दी का जज्बा कम से कम होता जा रहा है। तबई खसलत, मुरवत, मिलनसारी और फराग दिली के साथ एक दूसरे से पेश नहीं आते। इसकी एक वजह यह है कि बच्चे घरों में नफसा नफसी के माहौल में परवरिश पा रहे हैं। बड़ों की आपसी बातचीत में नफा नुकसान हायल होने लगा है। अपनी ज़ात का फ़ायदा हर बड़े को अजीज़ है, इसीलिए यही सोच बच्चों के जहनों में तेज़ी से पनप रही है। पहले के बच्चों में मासूमियत मिलती थी, अब के बच्चों में मासूमियत नाम की कोई शय है नहीं। मादी तरक्की पसंदी की हवा का असर ही कहा जाएगा कि बच्चों के जहनों में मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली है, हरकत की जगह शरारत ने ले ली है। बड़ों की देखा देखी, इनमें भी दिखावा करने और मोबाइल रील बनाने का शौक जिंदगी की सच्चाइयों से इन्हें दूर किए हुए है। हक़ गोई, सच्चाई, हक पसंदी, सिला रहमी, बड़ों की इज्जत व खिदमत, पड़ोसियों के साथ अच्छे मामलात, सभी के साथ हुस्न सलूक, मजबूर व माजूर मिस्कीन के साथ किसी किस्म की हमदर्दी, गरीबों मजलूमों के साथ इशार व क़ुरबानी और जानिसारी, तवाज़े, वज़ेदारी, सखावत जैसे औसाफ बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों में नेकी का जज्बा परवान चढ़े, हमदर्दी करने वाले बने, नेकी आम करें, बदी से बचें, नेक बने। इसीलिए तालीम के साथ तरबियत का होना भी या ज़ोर देना भी वालदेन व सरपरस्तों के लिए बेहद ज़रूरी है। इंसान से इंसान की मोहब्बत, इंसानी मसावात का हर एक फार्मूला तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक बच्चे की इब्तदाई परवरिश में नेक तरबियत, तालीम के साथ अखलाक और तहारत व पाकिजगी, वक्त की पाबंदी, मेहनत व ईमानदारी के अनासर दाखिल नहीं किए जाएंगे। बच्चों के लिए फ़र्ज़ है कि तालीम के साथ तरक्की के सफ़र तय करें, अपने नेक नाम

मैं ही ढल रहा हूँ, नहीं पाया सुकून तूने भी जालिम, तेरी आँखों से मैं ही ढल रहा हूँ। मुझे गम के तो खुश रहने दे, वहीं मैं हूँ जो तेरा कल रहा हूँ, वहीं मैं हूँ जो तेरा कल रहा हूँ। तेरी आँखों में अंगारे ये कैसे, तेरी आँखों में ये अंगारे कैसे, तेरी आँखों का मैं काजल रहा हूँ, तेरी आँखों का मैं काजल रहा हूँ। मुझे क्यों मसलों में तूने छोड़ा है, मुझे क्यों मसलों में तूने छोड़ा, तेरे हर मसले का हल रहा हूँ, तेरे हर मसले का हल रहा हूँ। मख्ता समात करें, ये किस जुर्म में हसरत को तन्हा, ये किस जुर्म में हसरत को तन्हा, तेरा मैं मुंतज़र पल पल रहा हूँ, तेरे गम के सहारे पल रहा हूँ। तफीश फुरखत की है और मैं जल रहा हूँ, चला हूँ आरज़ुएं मंजिल की लेकर, सदा कांटों पे लेकिन चल रहा हूँ। गज़ल का मतलब समाप्त करें, डूब कर जिनको उभरना आ गया, डूब कर जिनको उभरना आ गया, उनको जीना और मरना आ गया, डूब कर जिनको उभरना आ गया, उनको जीना और मरना आ गया। इश्क की कस्में जो खाते थे सदा, इश्क की कस्में जो खाते थे सदा, उनको वादों से मुकरना आ गया, उनको वादों से मुकरना आ गया। मंजिलें कदमों में उनकी हैं सदा, मंजिलें कदमों में उनकी हैं सदा, रुख हवाओं का जिनको बदलना आ गया, रुख हवाओं का जिनको बदलना आ गया। क्या जलाएगी उन्हें दुनिया कभी, क्या जलाएगी उन्हें दुनिया कभी, जिनको राह दिल में जलना आ गया, जिनको राह दिल में जलना आ गया। आंधियों से जाके ये कह दो ज़रा, आंधियों से जाके कह दो ये ज़रा, आंधियों में हमको चलना आ गया। उनके चूमे की कदम हर एक खुशी, उनके चूमे की कदम हर एक खुशी, जिनको हर कदम सब्र करना आ गया। सुरखरू होगा वो हसरत देखना, सुरखरू होगा वो हसरत देखना, जिनको कांटों पे चलना आ गया। डूब कर जिनको उभरना आ गया, उनको जीना और मरना आ गया। इश्क की कस्में जो खाते थे सदा, उनको वादों से मुकरना आ गया। मख्ता मुलाहजा करें, सुरखरू होगा वो हसरत देखना, जिनको कांटों पे चलना आ गया। गज़ल का मतलब समाप्त करें, ये अलग बात के हालात का मारा होगा, झूठ की बज़्म में कोई कैसे सच्चा होगा। ये अलग बात के हालात का मारा होगा, झूठ की बज़्म में कैसे कोई सच्चा होगा। तू ना हरगिज़ ये समझ जग ने भुलाया होगा, तू ना हरगिज़ ये समझ जग ने भुलाया होगा, आज तेरा है तो कल मेरा भी होगा, आज तेरा है तो कल मेरा भी होगा। तू जो जाता है नज़र फेर के जाने वाले, तू जो जाता है नज़र फेर के जाने वाले, कैसे कर लूँ मैं यकीन तूने भुलाया होगा। तू जो जाता है नज़र फेर के जाने वाले, कैसे कर लूँ मैं यकीन तूने भुलाया होगा। मैंने सूरज को भी देखा है यहाँ बैठे हुए, मैंने सूरज को भी देखा है यहाँ बैठे हुए, राह में एक शजर ऐसा भी आया होगा। मैंने सूरज को भी देखा है यहाँ बैठे हुए, राह में एक शजर ऐसा भी आया होगा। जिस तरफ देखूं मैं रास्ते ही नज़र आते हैं, जिस तरफ देखूं मैं रास्ते ही नज़र आते हैं, मेरी मंजिल का मगर कौन सा रास्ता होगा, मेरी मंजिल का मगर कौन सा रास्ता होगा। शबे तारीख में तुम सोच समझ कर चलना, शबे तारीख में तुम सोच समझ कर चलना, शहर ऐसा है कि हर मोड़ पे ख़तरा होगा। शबे तारीख में तुम सोच समझ कर चलना, शहर ऐसा है कि हर मोड़ पे ख़तरा होगा। तू ज़माने में तमाशा जो बनाता है मुझे, तू ज़माने में तमाशा जो बनाता है मुझे, सोच ले तेरा भी एक रोज़ तमाशा होगा। तू ज़माने में तमाशा जो बनाता है मुझे, सोच ले तेरा भी एक रोज़ तमाशा होगा। वैसे ये चांदनी हर एक को कहाँ भाती है, वैसे ये चांदनी हर एक को कहाँ भाती है, चांद तारों ने भी शायद मुझे देखा होगा, चांद तारों ने भी शायद मुझे देखा होगा। तेरे गम में मैं समंदर की तरह ठहरूं, तेरे गम में मैं समंदर की तरह ठहरूं, तेरी आँखों से भी कोई दरिया बहता होगा, तेरी आँखों से भी कोई दरिया बहता होगा। मख्ता मुलाहजा करें,
अपनी रानाई को हर एक से बचा।

0: कर रखना, अपनी रानाई को हर एक से बचा कर रखना। तुझको हसरत से कोई बज़्म में तकता होगा, अपनी रानाई को हर एक से बचा कर रखना, तुझको हसरत से कोई बज़्म में तकता होगा। गज़ल का मतलब समाप्त करें। बस एक तेरे बिछड़ने का ख्याल मेरे साथ है, हैं आँखें अब भी नम मेरी मलाल मेरे साथ हैं। बस एक तेरे बिछड़ने का ख्याल मेरे साथ है, हैं आँखें अब भी नम मेरी मलाल मेरे साथ है। पढ़ूंगा भारी दुश्मनों पे मैं हमेशा देखना, पढ़ूंगा भारी दुश्मनों पे मैं हमेशा देखना। है साथ हौसला मेरे जलाल मेरे साथ है। मुझे डसा है दोस्तों ने नाक बन के किस लिए। हर एक लम्हा बस यही सवाल मेरे साथ है। चटाई पर मुझे हमेशा नींद आने लग गई। हराम रिस्क दर्द है हलाल मेरे साथ है। हराम रिस्क दूर है हलाल मेरे साथ है। चटाई पर मुझे हमेशा नींद आने लग गई। हराम रिस्क दूर है हलाल मेरे साथ है। घिरा हुआ हूँ दुश्मनों में मगर नहीं है डर मुझे। घिरा हूँ दुश्मनों में मगर डर नहीं मुझे। बुज़ुर्गों की दुआओं की जो ढाल मेरे साथ है। जो कह रहे हैं लोग के मैं हंस रहा हूँ झूठ है। अलम है और रंज है मलाल मेरे साथ है। अलम है और रंज है मलाल मेरे साथ है। खिले हैं फूल हर कदम पे मेरे रास्ते में अब। तेरी निगाह नास का ख्याल मेरे साथ है। बिछा दो कांटे राह में हजार कर लो तुम सितम। रहे ख्याल रबुल जलाल मेरे साथ है। मख्ता मुलाहिजा करें। तुम्हारी बज़्म में चलेगा मेरा तस्किरा सदा। सुखनवरी का ऐसा कुछ कमाल मेरे साथ है। बस एक तेरे बिछड़ने का ख्याल मेरे साथ है। हैं आंखें अब भी नम मलाल मेरे साथ है। पढ़ूंगा भारी दुश्मनों पे मैं हमेशा याद रखना। है साथ मेरे जलाल मेरे साथ है। मुझे डसा है दोस्तों ने नाक बन के किस लिए। हर एक लम्हा बस यही सवाल मेरे साथ है। गज़ल का मतला समाप्त करें। सामने से मेरे गुजरे हैं खदावर कितने, मुझसे मिलने भी चले आए हैं अक्सर कितने। सामने से मेरे गुजरे हैं खदावर कितने, मुझसे मिलने भी चले आए हैं अक्सर कितने। आजमाइश है ये कुदरत की खुदा खैर करे, हो के अब रह गए आसाम में बेघर कितने। आजमाइश है ये कुदरत की खुदा खैर करे, हो के अब रह गए आसाम में बेघर कितने। बैल दरिया की मिसाल आज भी कब मिलती है, बैल दरिया की मिसाल आज भी कब मिलती है। एक दरिया को तरसते हैं समंदर कितने। ये अलग बात है कांटों ने संभाला होगा। फूल के सीने पे तोड़े गए पत्थर कितने। ये अलग बात है कांटों ने संभाला होगा। फूल के सीने पे तोड़े गए पत्थर कितने। उनकी आँखों का नशा ऐसा गज़ब का है नशा। छूट जाते हैं हर एक हाथ से सागर कितने। वक्त की मार ने हालात बदल डाले हैं। दरबदर आज जो हैं कल थे तवंगर कितने। दरबदर आज जो हैं कल थे तवंगर कितने। क़ैद आँखों में मेरी हो गए मंजर कितने। क़ैद आँखों में मेरी हो गए मंजर कितने। नफ़रत व बुग़्ज़ व अदावत की रियाकारी। ज़िंदगी तेरे बयाबाँ में है लश्कर कितने। नफ्स व बुग़्ज़ व अदावत की रियाकारी। ज़िंदगी तेरे बयाबाँ में है लश्कर कितने। मक्ता मुलाहज़ा करें। एक गुनहगार की मानिन खड़े हैं हसरत। रह गए हम भी ज़माने में बिखर कर कितने। एक गुनहगार की मानिन खड़े हैं हसरत। रह गए हम भी ज़माने में बिखर कर कितने।
1: बिसात गज़ल सिलसिले में

दोस्तों, अगला गीत हमने लिया है फिल्म जुर्माना से, सामाई ने जीविकार। जब सावन की पहली फवार जमीन को छूती है तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं दोस्तों, बल्कि सब कुछ महकने लगता है। दिल भी खुशबुओं से भर जाते हैं, दरख्तों की शाखों पर झूले पड़ते हैं, फजाओं में कोयल की कूक गूंजती है, और मोहब्बत के जज्बाती नई एहसासात अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं। भारतीय फिल्मी मौसिकी ने भी सावन की इसी दिलकश कैफियत को बड़े खूबसूरत अंदाज में नगमों में समाया है। ऐसा ही एक नगमा जिसमें बारिश की रिमझिम, झूलों की मस्ती और मोहब्बत की लताफत एक साथ जलवागर होती है। अब आपकी खिदमत में पेश है, तो आइए दिल को मौसम बरसात के हसीन एहसास के सुपुर्द कीजिए और समातों को महका दीजिए इस सुरेले नगमे के साथ।

रोमानियत को अपनी सुरेली धुन में समोए हुए है। गीत सुरेले गाता जाके इस खूबसूरत सफर में पेश खिदमत है बारिश के मौसम का एक यादगार फिल्मी नगमा।

सामान्य क्रम बरसात का मौसम है, रिमझिम बारिशों की फवार इंसानी दिल को भी मसहूर कर रही है। बारिश की बूंदें जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिरती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे फितरत खुद कोई सुरीली धुन छेड़ रही हो। कहीं बादल गरजते हैं, कहीं हवा गुनगुनाती है और कहीं दिल के तार मोहब्बत की लय पर बजने लगते हैं। हिंदी फिल्मी मौसिकी ने बरसात के इन दिलकश लम्हों को कई बार नगमों में ढाला है। अब पेश खिदमत है ऐसा ही मकबूल नगमा जिसकी धुन बोल और मौसिकी ने बरसों से सामाइन के दिलों में अपनी जगह बना रखी है। जी हाँ, फिल्म मोहरे का ये गाना बरसात की रिमझिम भीगी फ़जाओं और मौसीकी के हसीन इम्तिजाज से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और सुनते हैं ये नगमा।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत सुरेले गाता जा। आइए सुरेले गीतों के इस सफर में अब हम आपको ले चलते हैं एक और फिल्मी गीत की तरफ। साथियों, मोहब्बत जब अपने जज्बात का इजहार करना चाहती है तो कभी अल्फाज का सहारा लेती है, कभी खामोश निगाहों का और कभी बारिश की बूंदों का। बरसात का मौसम दिलों को करीब लाने, यादों को ताज़ा करने और एहसासात को नई ताजगी बख्शने का मौसम है। ऐसे ही दिलकश जज्बात को अपने सुरेले अंदाज में पेश करता है ये खूबसूरत फिल्मी ड्रामा। इसके बोल मोहब्बत की लताफत, इंतजार की तपिश और बारिश की कुनकी को एक साथ समेटे हुए हैं। तो आइए दिल के दरीचे खोलिए, मौसम बरसात की महक को महसूस कीजिए और समातों को सुपुर्द कीजिए इस रोमांस भरपूर नगमे के।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीत सुरेले गाता जा। मौसम है बरसात का और मौके की नज़ाकत इस बात का हमें

दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत सुरेले गाता जा। मौसम है बरसात का और मौके की नज़ाकत इस बात का हमें एहसास दिलाती है कि फिल्मी गीत भी इसी मौजू से जुड़े हुए हैं। आइए दोस्तों, बरसात का मौसम सिर्फ बादलों और बूंदों का नाम नहीं बल्कि ये जज्बात, यादों और मोहब्बतों का मौसम भी है। जब काली घटाएं उफक पर छा जाती हैं, ठंडी हवाएं दिल को छूकर गुजरती हैं और बारिश की रिमझिम कानों में रस घोलती है, तो यूं महसूस होता है जैसे कुदरत खुद कोई फिल्मी नगमा गुनगुना रही है। शायद यही वजह है कि हिंदी सिनेमा ने बरसात को हमेशा मोहब्बत की जुबान बनाया। कभी सावन के झूले पड़े कि मस्ती, कभी टिप टिप बरसा पानी की रिमझिम, कभी मुझको बरसात बना लो कि रोमानियत, तो कभी प्यार हुआ, इकरार हुआ जैसे लाजवाल धुने। हर नगमा बारिश के मौसम को एक नई खुशबू अता करता है। तो आइए, खिड़की पर दस्तक देती बूंदों, भीगी हुई फजाओं और दिल में जागती हसीन यादों के साथ मौसीकी के इस दिलकश सफर का आगाज करते हैं। पेश खिदमत है एक और बरसात के मौसम से जुड़ा फिल्मी नगमा, जो हर बार सुनने पर दिल को ताजगी, आंखों को ख्वाब और लबों को मुस्कुराहट दे जाता है।

दोस्तों, फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी है। साथियों, कुछ मौसम सिर्फ आते नहीं, दिल में उतर जाते हैं। बरसात भी इन्हीं मौसमों में से एक है। कहीं चाय की खुशबू, कहीं भीगी मिट्टी की महक, कहीं पुरानी यादें और कहीं फिल्मी गीतों के मुद्दर धुने, यही तो बरसात का हुस्न है। तो आइए, बारिश की रिमझिम के साथ एक और लाजवाल नव में से लुत्फानंदोज होते हैं। इस गीत को हमने लिया है बीवी और मकान फिल्म से।

दोस्तों, पुराने फिल्में गीतों से सजा कार्यक्रम गीत सुरीले गाता जा भी आप सुन रहे थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं पयाम शब। आज का शब का पयाम जैदी की जबानी, समात फरमाइए।

0: दिल के वीरानों में घूमोगे तो भटक जाओगे, रौनके कूचे वो बाजार से आगे ना बढ़ो। हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे दर्द, राज और आजमाइशें पोशीदा होती हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए दूसरों के बातिन का फैसला करने, उनकी निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करने या छुपी हुई बातों की खोज लगाने से गुरेज करना चाहिए। इज्जत उसी में है कि इंसान दूसरों की पर्दापोशी करे, उनकी हुदूद का एहतराम करे और अपने दिल को भी अल्लाह की याद, नेक अमाल और अच्छे अखलाक से आबाद रखे। हर दिल एक अलग दुनिया है, उसके राजों का एहतराम करें, दूसरों की निजी जिंदगी में बिला जरूरत झांकने से परहेज करें। पयाम शब अज़ली से अभी आपने सुना दोस्तों, इसी पर उर्दू प्रोग्राम नए रंग अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। चंद लम्हों में हिंदी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा

0: जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, Vaishnava could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
4: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments, while the Rajya Sabha was adjourned.

0: कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है, और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
1: जी,
0: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
1: जी,
0: उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
1: जी।
0: तो ये आज के बाजार में। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पे हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप, जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
2: Right, Shishir ji, we were talking of the banking stocks. PSU banks and private banks, almost 5% of a difference. If you look at the PSU banks, jumped 3%, and the private banks dropped 2.1%, almost a 5% contrast. What accounts for that?
0: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit, net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net profit. And at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks. And that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
2: Another point, Shishir ji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
3: जी नमस्कार शिशिर साहब।
0: नमस्कार।
3: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सक्यूट किया। सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट है, या हम उन पर हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं।
0: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। और ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं। पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं IT सेक्टर्स की, जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने। यही पक्ष जो है वो आप AI के लिए भी कह सकते हैं कि AI के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं। आपका यह है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या AI हावी होगा? हम अगर हावी होने देंगे तो AI हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाए, तकनीक को अपना मालिक ना बनाए। तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक IT सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं IT सेक्टर के, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या NVIDIA के जो CEO हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि AI को लेकर

0: के डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एआई को साथ लेने की जरूरत है। इससे हमारा आपका कौशल बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं। और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है डी आर आचार्य की। जी, अपना सवाल पूछिए महोदय।
2: हाँ सर, मैडम, मेरा एनपीएस में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, इसमें पैसा लगाना ठीक होगा? और
0: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है। जब आप सेवानिवृत्त होंगे वहाँ पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा। आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। चूंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है, आप विकल्प देते हैं और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
1: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एफडी से बेटर किसी हमें पैसा लगाना चाहिए? और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो लगी चल रही है तो वहाँ काफी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, यूक्रेन, ईरान और अदर्स अरब क्षेत्रों में, तो आने वाले समय में यहाँ काफी जो काफी दिल्ली के द्वारा से भरेगी तो इस क्षेत्र में काफी स्कोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बेनिफिट आगे हम प्रसाद रास्ता है?
0: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
4: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
1: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते हैं। निश्चित,
4: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स For the first quarter of the current financial year, the company's consolidated revenue from operations rose by 15.8% year-on-year to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
1: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा।

0: और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय अपना सवाल पूछिए कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं।
0: जी
1: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था। थैंक यू।
2: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहां पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपए पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपए का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
0: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा, ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगे।
2: देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक हैं, अगर हम बात करें जीडीपी, हम बात करें महंगाई दर की और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना इसलिए आधार वर्ष का तय नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप जीडीपी का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है, डब्ल्यूपीआई का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है, सीपीआई की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ है, और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
3: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
4: जी नमस्ते सर।
2: नमस्ते।
4: मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सीनियर सिटीजन स्कीम में मैंने बैंक में पैसे लगाए हुए हैं, हाँ सर
2: जी जी,
4: तो इसको जैसे पीपीएफ का पैसा तो सरकार देती है तो इसको बैंक देगा या सरकार देगी, और ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब जाए तो फिर वो मर जाएगा पैसा ज्यादा करवा दिया तो।
2: कांता जी, दो बातें हैं, जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज

0: दर है उससे कहीं ज्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहां पे फायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
1: शिशिर दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
2: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इश्यू हो जाएंगे जी उसके फिजिकल शेयर?
0: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है, आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर हैं वहां के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा इसमें से कोई भी एक जानकारी देकर के आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क

0: में से कोई भी एक जानकारी देकर के आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
1: शिशिर जी, वन क्वेश्चन which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now. So given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
0: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are asked is there that why there the number is so encouraging, why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending. One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is of course on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is export number, and then the consumption number.
2: Right. और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते
3: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी पूछा
0: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
3: संतोष, संतोष,
0: संतोष पॉलिसी।
3: हाँ, पोस्ट ऑफिस का है, संतोष, संतोष, संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है।
3: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41। तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा। तो सर वो 2 लाख के इंश्योरेंस बता प्रति, मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए।
0: okay.
3: 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें? पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं। और एक और सवाल है
0: जी,
3: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
0: जी,
3: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर।
0: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता, बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहाँ आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाकघर में भी आप खोल सकते, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात की देखिये, व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हो उसमें कोई जीएसटी नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है। रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफी ज्यादा होती है।
1: Yeah, moving on to crude now. The global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the US could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5%

0: down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji, on crude.
1: The problem we are facing at this moment is there's still a lot of uncertainty. Mm-hmm. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. Mm-hmm. On the other side, when you hear U.S. president, he has his own way of explaining the thing. So at this moment, today, you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
0: 0.8%.
1: Yes. I'm sorry. 0.8% and it was $87 a barrel. Mm. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
0: Right. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona aadhe pratishat se adhik badhkar 1,41,754 rupaye prati 10 gram par karobar kar raha tha aur sitambar anubandh wali chandi 1.3% ki badhat ke saath 2,19,233 rupaye par chal rahi thi. Shishir ji, sanshipt tippani chahungi aapse sone aur chandi ke bhav par.
1: Dekhiye, ek dilchasp baat yeh hai ki ladai ke beech mein sone chandi ke bhav mein giravat aa rahi hai. Ye kai baar log को हैरान भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से. जब जब डॉलर मजबूत होगा, सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा.
0: राइट
2: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी धन्यवाद.
0: थैंक यू सो वेरी मच शशि जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239. इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन. एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. आई एम निशित कुमार अलॉन्ग विद माई को एंकर प्राची प्रिया सेइंग गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम की, इस बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और

0: रास्ते सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री जावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने में के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मेमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो दिनों तक ऐसी ही मौसम बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with the obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father, Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Vikasit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

कर्ज फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत से दूर रहने की हिदायतें तो सदियों से दी जाती रही हैं, मगर इश्क कब किसी नसीहत का मोहताज रहा है। दिल जब किसी की आहट को अपनी धड़कन बना ले, तब दुनिया की हर सलाह, हर दलील और हर रोक बस एक आवाज़ बनकर रह जाती है। आखिर इश्क के मामले में कौन किसी की सुनता है? या तो दिल ही फैसला करता है और वही अपना अंजाम भी लिखता है।

को डांसर फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत भी दिया बप्पी लाहिड़ी ने। वो लम्हे, वो बातें, वो एहसास जो कभी मेरी दुनिया थे। कुछ रिश्ते भले ही वक्त की धूल में ओझल हो जाएं, मगर उनकी महक उम्र भर दिल में बसी रहती है। तेरे प्यार की वही खुशबू आज भी मेरी यादों में उतर आई है।

लौटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज़ में। कैफी आज़मी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज़ में। कैफी आज़मी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई
1: चांद की बिना तेरे सुने ही बात हो गई
0: ओहो ओहो ओहो

बातों बातों में फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कभी कभी मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती। दो निगाहें मिलती हैं, दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और बिना किसी इजहार के एक रिश्ता जन्म ले लेता है। यही तो प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप है, जहां खामोशियां भी गुफ्तगू करती हैं और बिना कहे सुने ही दिलों की बात हो जाती है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गजल सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अमीर मीनाई ने इसे लिखा था और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपने इस गजल में एक बात महसूस की, यहां आहिस्ता आहिस्ता इस शेर की जान है, यहां जल्दबाजी नहीं बल्कि उस पल को जीने की रवानी है जहां हर नजर हर मुस्कान और हर झलक अपने आप में एक मुकम्मल कहानी बन जाती है।

कभी कभी हिंदी फिल्मी गीत प्रेम की उस पहली हलचल को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर जाते हैं कि शब्द सीधे दिल में उतर आते हैं। शायद यही वजह है कि ये गीत सुनते हुए महसूस होता है कि सच्चा प्यार जब दिल को छूता है तो उसकी खुशबू सिर्फ यादों में नहीं पूरे वजूद में उतर जाती है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे नक्श ने लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

है 12:52 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

बीता फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावास केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय,

विकास, समुद्री स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इतने प्यारे गीतों का साथ हो तो नींद भला कैसे आए। हर नगमा किसी याद को छेड़ देता है, हर धुन किसी एहसास को जगा देती है। ऐसी रातों में आंखें भले ही जागती रहे मगर दिल सुरों की चादर ओढ़कर एक खूबसूरत सफर पर निकल पड़ता है।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 से आपने गाना सुना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी वीर जी शाह ने। गीत सुनते सुनते जब नींद आंखों में उतरने लगे तो लगता है जैसे सुर लोरियां बन गए हों। हर धुन धीरे धीरे मन को सहलाती है और हर शब्द सपनों का रास्ता दिखाने लगता है।

मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। क्या खूबसूरत एहसास है इस पंक्ति में। कभी किसी की याद, कभी किसी का ख्याल, तो कभी कोई प्यारा सा नगमा। कुछ तो है जो रात भर आंखों को जगाए रखता है। नींद आती भी है तो ठहरती नहीं, जैसे किसी ने चुपके से उसे अपनी हथेलियों में समेट लिया हो। पूजा के फूल फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। हर रात चांद तो अपने वक्त पर लौट आता है, मगर जिसका इंतज़ार हो उसके कदमों की आहट नहीं आती। फिर भी दिल उम्मीद का दिया बुझने नहीं देता, शायद अगली चांदनी रात के साथ वो भी लौट आए, जिसकी कभी हर उजाले को जिसने कभी हर उजाले को अधूरा बना दिया था।

अतिता फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 1 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आपने सुना शबाब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। इश्क की दुनिया में आशिक अपने महबूब से जुड़ी हर राह, हर गली, हर याद को अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा अजीज मान लेता है। यही वजह है कि ऐसे गीत सुनते हुए हमें एहसास होता है कि मोहब्बत का असली रंग पाने में नहीं, बल्कि उसे पूरे दिल से महसूस करने में है।

कभी कभी रिश्तों में कोई गुनहगार नहीं होता, बस हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां दोनों तरफ दर्द होता है, दोनों तरफ इंतजार होता है और दोनों तरफ अनकही बातें रह जाती हैं। ऐसे गीत हमें सिखाते हैं कि हर बिछड़ने वाली कहानी में एक ही दिल नहीं रोता, कई बार दोनों ही अपने अपने हिस्से का गम चुपचाप जी रहे होते हैं। आपने सुना कुंदन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने।

रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने। यादों की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है। हम समझते हैं कि वक्त ने हमें उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर किसी शाम की खामोशी, किसी हवा के झोंके या किसी पुराने नगमे की धुन उन्हें फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है।

जब से तुम्हें देखा है इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया दत्ताराम ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कितनी सहज और गहरी बात है ये, प्यार किया।

नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम कोई फैसला नहीं, एक एहसास है। ये ना तो किसी योजना का हिस्सा हो सकता है, ना किसी तर्क का। कब कोई मुस्कान दिल में उतर जाए, कब किसकी आवाज अपनी लगने लगे, और कब किसी की मौजूदगी जिंदगी का सुकून बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।

जुर्म फिल्म का गाना आपने सुना, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। देव कोहली ने इसे लिखा और संगीत दिया आनंद राज आनंद ने। जिंदगी हर दिन एक सी नहीं होती, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी परेशानियों की छांव। ऐसे में सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ होता है, एक ऐसा साथ जो हालात बदलने पर भी न बदले।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:35 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कुछ चीजें कितनी भी संभाल कर क्यों ना रखी जाएं, वक्त, हालात या लापरवाही की एक चोट उन्हें बिखेर सकती है, लेकिन संगीत की खासियत देखिए, वो टूटे हुए दिल की आवाज भी बन जाता है और बिखरे हुए एहसासों को फिर से समेटने का हौसला भी देता है।

कुछ एहसास उम्र के साथ फीके नहीं पड़ते। तेरे पहले प्यार की खुशबू आज भी मेरी सांसों को महका रही है और हर धड़कन जैसे उसी अनकहे मासूम से एहसास का गीत गुनगुना रही है। फिल्म बदलते रिश्ते का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और

एक जान है हम, इस फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया अनु मलिक ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 50 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुनेंगे कार्यक्रम आप पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की SI जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा अवास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूं आपके साथ और रात के 3:10 हो चुके हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही। और अब मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद और अजनबी मूवी के इस गाने से शुरुआत करते हैं और आप इन गानों का मजा लीजिए। दो गानों के बाद आपसे मुलाकात होती है।

समय के साथ पुरानी चीज़ों का स्वाद जो है वो कम हो जाता है, लेकिन इन पुराने गानों का टेस्ट तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आराधना मूवी से लता जी और किशोरदा की वॉइस में ये गाना था, एस टी बर्मन का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। आधी रात की इस खामोशी में जहाँ आधी दिल्ली सो रही है, वहीं कई लोग जो हैं वो अलग अलग कारणों से जागकर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। कोई अपनी जॉब कर रहा है और कोई जो है कुछ और काम कर रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके साथ आपको जगाए रखने के लिए आपके साथ बातें कर रहा हूँ। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ, और पुराने डुएट्स गानों का कलेक्शन लेकर हमरा ही शो में मैं आपके साथ रहूँगा इस पूरे घंटे। और देखिए, एक चीज़ और भी मुझे बतानी है कि प्यार जो है ना वो किसी से भी हो वो खुशी ही देता है, तो इन गानों से मोहब्बत करने वालों के लिए सुकून की रात है। मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी के लिए दहलीज मूवी से महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में ये गाना।

कुछ अपनी सी अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक मैं और एक तू मूवी से ये वाला गाना था। और देखिए, अगर बेकार की बातों में हम उलझे रहेंगे ना तो जिएंगे कब? जिंदगी बीत रही है और अपने पसंदीदा इंसान के साथ जो है वो खुशनुमा लम्हे बनाइए और उनका मज़ा लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई नो ये एक फिल्म का मैंने डायलॉग मार दिया, लेकिन बातों से ये जिंदगी तो देखिए हर दिन बीत ही रही है। ये जो टाइम अभी जो हम जी रहे हैं, ये टाइम जो है सुबह के 6 बजे तक नहीं होगा, सुबह कुछ और चीज़ होंगी। तो और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये बतानी है कि जब आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान हुआ तो सच मानिए ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं हूँ पंकज, आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। प्यार बांटिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है।

एंड मूवी के इस गाने में विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की रोमांटिक केमिस्ट्री गजब की थी। और इस गाने में पता है एक लाइन आती है कि मैंने जिसे चाहा वही यार मिला रहे। आपको पता है कि इंसान ना तभी खुश रह पाता है जब जिंदगी जीने के लिए उसके पास उसकी पसंद का एक शख्स उसके साथ हो, और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए ताकि आगे जाके आपको इस बात का गिल्ट ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। एटलीस्ट ट्राई करेंगे, मिल गए सो ठीक है, बाकी तो किस्मत की बात है ही। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर हमराही शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। समझौते वाले रिश्ते जो हैं उनको जोड़ने से बेहतर है कि पसंद के शख्स के साथ जिंदगी का हिस्सा बन जाना।

ये आधा साल बीत चुका है और समय तो मानो एकदम भाग रहा हो। वैसे हमराही शो का टाइम भी जो है वो पूरा होने वाला है और अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा। तो इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अभी कुछ मिनट जो बचे हैं उसके लिए आप इस शो का ये गाना सुनिए और बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों की मेडिको लीगल जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों तथा बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन कम किया जा सके। और खेलों में ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5 एशिया

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। शुरुआत करते हैं जीवनधारा फिल्म के इस गाने के साथ SP बालसुब्रमण्यम की आवाज में।

0: आशा जी की आवाज में गाए हुए गाने। अगर तुम ना होते मूवी का ये गाना आपने सुना था, गुलशन बावरा के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। आज 21 जुलाई मंगलवार है और मैं पंकज अरुणिमा शो में आपके साथ हूँ। देखिए, समय को भी ना थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि वो हमारे लिए मंगल परिस्थितियां बना सके, यानी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो जिंदगी को जी भर कर जीते रहिए और जो होना है वो तो होकर रहेगा ही। तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। खैर, अब इन दो गानों के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, तो ऐसे ही इन गानों का मजा लेते रहिए और फिर से आपसे मिलता हूँ।
1: धीरे धीरे

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल्ली में से मैं बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वाणी जयराम की आवाज़ में गुड्डी फिल्म से ये गाना था, गुलजार के बोल और बसंत देसाई का संगीत था। जब जिंदगी में अपने दम पर लाख जतन के बाद भी परिस्थितियाँ सही ना होना, और तब हमें ऐसा करना चाहिए, यानी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है प्रार्थना में जो है वो बड़ा बल होता है जो असंभव को भी संभव कर देती है। बस प्रार्थना जो है वो सच्चे मन और अच्छी नीयत से होनी चाहिए, जिसमें किसी का भी बुरा ना हो। यकीन मानिए प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और पूरी भी की जाती हैं, इसलिए हर पल प्रार्थना करते रहिए, कुछ अपने लिए कुछ सबके लिए।

इस गाने की एक एक बात बहुत सच है। और पता है मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे समझाया है कि कभी भी किसी भी चीज़ का ना अहंकार मत करो, क्योंकि जो अच्छा आपके पास है उसे हमें ज़रूरतमंदों को बांटनी चाहिए। और ये बात सच भी है कि अहंकार जो है वो मनुष्य के पतन का कारण बनता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। अहंकार ने न जाने कितने लोगों को नष्ट कर दिया, इसकी ढेरों कथा कहानियाँ जो हैं वो हमें असल जीवन में भी देखने सुनने को मिल ही जाती हैं। इसलिए विनम्र और प्रेम से भरकर सबको सिर्फ प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं।

किशोरदा की आवाज में मशाल फिल्म से आपने ये वाला गाना सुना। और अब जो है अगले घंटे मैं पंकज भोर सुहानी शो में आपसे, यानी नेक्स्ट शो है ये, इसमें आपसे मिलूंगा क्योंकि और बड़ी सुबह होने वाली है। वैसे तो अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से बाहर जाकर देखा तो अभी दिल्ली में जो है बूंदाबांदी हो रही है, यानी बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है और सुबह का नज़ारा तो होता ही हमेशा बहुत ही प्यारा, मन को खुशी देने वाला होता है। तो थोड़ी देर में सुबह 5 बजे से आप हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे और फिर 5:10 पर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। अभी ये वाला गाना सुनिए येसुदास की आवाज़ में, इस टाइम के लिए एकदम परफेक्ट गाना है फ्रॉम द मूवी हैसियत।

0: विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताओं किया, वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश के जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं पंकज आपके साथ इस शो में रहूंगा। अभी के लिए शुरुआत करते हैं दो गानों से। राम लखन फिल्म से ये गाना आप सुनिए और उसके बाद दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में संगीत फिल्म से ये गाना था संतोष आनंद के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत था। बहुत ही सुंदर सी सुबह का नज़ारा दिल्ली का इस समय है और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा है हल्की हल्की बारिश हो रही है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। 21 जुलाई मंगलवार का दिन दिल्ली शहर भी जाकर जो है अपने अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा है और जाना भी है भाई क्योंकि आज मंगलवार है तो काम तो करना पड़ेगा। मतलब अगर सैटरडे या संडे होता तो बात अलग होती लेकिन नहीं आज ट्यूसडे है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा वैसे इन सबके साथ ना मुझे ऐसा आपसे एक बात करनी है कि देखिए हम सबको पता है एक बात समझनी चाहिए कि जिंदगी बीतेगी और बीत रही है लेकिन इसे कैसे बिताना है ये आपके सकारात्मक एक्शंस पर डिपेंड करता है। तो जब बिताना ही है तो खुशी से क्यों ना बिताएं, है ना। इन दो गानों के बाद मैं पंकज आपसे फिर से मिलता हूँ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो में। ऐसे ही सुनते रहिए।